राखी को स्रोत व्यापारिक विश्राम संगे पुनः स्वागत करद कार्यक्रम गांबुस्ती का भाका में आज हम कार्यक्रम गांबुस्ती का भाका को सुंदर व्यवसाय आईतबार व्यवसाय में रहकर नया नया लोकगीत भाका कार्यक्रम में जोड़े अगाड़ी बढ़ी रह तबहन कार्यव्यस्तता में फुर्सद को समय में जहां जे जस्त अवस्था में रहकर हमी सुनेर साथ दी रहने ये विश्वास राख्ते ये बेला को क्रम में हमी अर्क श्रीमधुर खाल भाका जोड़ सही भाका संगे हमी पुनः पास तफ यहां हमी संगे रहन्हला।